0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Solu FM. Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihanako 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ मा न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु

0: सांस्कृतिक निमंत्रण कोशी प्रदेश सरकार द्वारा 80 दिन गते विराटनगर स्थित शहीद रंगशाला में माननीय प्रदेश प्रमुख परशुराम थापुंग को प्रमुख आतिथ्य था माननीय मुख्यमंत्री हिक्मत कुमार कार्की को अध्यक्षता में भव्यता का साथ संविधान दिवस मनाइने भएको हुँदा सो कार्यक्रम में सहभागिता का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
1: कार्यक्रम असोज 3 गते शनिवार बिहान 6:30 बजे आदर्श माध्यमिक विद्यालय विराटनगर अगाडि भेला भएर बृहत प्रभात फेरी शुरू गरिने झाँकी प्रदर्शनी खेल कौशल प्रसिद्ध कलाकारहरूको प्रस्तुति र पुरस्कार वितरण
0: संविधान दिवस 2083 मूल समारोह समिति।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्डचेक सूर्य एफएम स्टुडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू तुतुन नगर

0: ಹಾರ್ದಿಕ್ ನಿಮಂತ್ರಣ. कृषि प्रदेश सरकार द्वारा 80 दिन गते विराटनगर स्थित शहीद रंगशाला में माननीय प्रदेश प्रमुख परशुराम थापुंग को प्रमुख आतिथ्य था माननीय मुख्यमंत्री हिक्मत कुमार कार्की को अध्यक्षता में भव्यता का साथ संविधान दिवस मनाइने भएको हुँदा सो कार्यक्रम में सहभागिता का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं.
1: कार्यक्रम 80 दिन गते शनिवार बिहान 6:30 बजे आदर्श माध्यमिक विद्यालय विराटनगर अगाड़ी भेला भएर बृहत प्रभात फेरी शुरू गरिने झाँकी प्रदर्शनी खेल कौशल प्रसिद्ध कलाकारहरूको प्रस्तुति र पुरस्कार वितरण
0: संविधान दिवस 2083 मूल समारोह समिति.

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: The Baron Select
2: JST
3: SCBC JST Desa Vimal Sundar Muhar Ko Suraksha Kavach
4: M Plus Professional
5: Manu Jishin
6: Jiyo Chho Rahi Rahani
7: Max on ED Max
8: आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आत्मा त्यागेर सुनौ रमाइलो

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
1: उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
2: सन्चे सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
3: इट्स 6 PM साँझको 6 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू
4: Wherever you are, stay connected. Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
5: Where do we begin?
4: With international news, you can...

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Solu FM. Studio time.
4: It's 7 p.m. Start ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू